अस्सलाम वालेकुम सामने, हम सदाए तुर्किया से मुखातिब हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 3 अक्टूबर प्रोस हफ्ता है। इस वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक सुपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। सामने आप हमारी नशरियात को शॉर्टवेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज़ के अलावा 3 ईस्ट और 4 समेत हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। सामने आज हमारे प्रोग्राम में अलल तरतीब खबरें होंगी। इसके बाद सिलसिला प्रोग्राम देने वाले हाथ की कहानी और फीचर पेश किए जाएंगे। हमारे प्रोग्राम हसब मामूल 1 घंटे तक जारी रहेगा। आज आपके मेजबान हैं इमरान ओबर।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: सियोल की फौज का कहना है कि शुमाली कोरिया ने कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। ये ईरान इसके एक दिन पहले आया जब प्योंगयांग ने जनूबी कोरिया को काबिल नफरत करार दिया था, क्योंकि जनूबी कोरिया ने गैर फौजी जोन में एक धमाके पर माफी का मुतालबा किया था जिसमें इसके 3 फौजी जख्मी हुए थे। सियोल के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने हफ्ते को कहा, हमारी फौज ने शुमाली कोरिया के वनसान इलाके से मशरकी समंदर, जिसे बहरे जापान भी कहा जाता है, की जानब एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होने का तयन किया है। प्योंगयांग ने गुज़िश्ता माह गैर अस्करी जोन के अंदर होने वाली बारूदी सुरंग के धमाके में मुलव्वस होने से इनकार किया है। DMZ वो भारी बारूदी सुरंगों वाली हिफाजती पट्टी है जो 1953 की जंगबंदी के बाद दोनों कोरियाई ममलकतों को जुदा करती है। सियोल अमरीका की क्यादत में अकवामतदा की कमांड ने कहा, धमाका सरहद के जनूबी हिस्से पर नव शुमाली कोरिया के बारूदी सुरंगों की वजह से हुआ था। जनूबी कोरिया की फौज ने इस हफ्ते के अवायल में शुमाली कोरिया से सरकारी माफी का मुतालबा भी किया। एक दिन बाद जनूबी कोरिया के अम पसंद सदर ली जे म्यूंग ने प्योंगयांग से मुजाकरा की तरफ लौटने की अपील भी की।

नकदी वक्फ और इक्तसादी इंसाफ बरकत का दायमी चक्कर। क्या वक्फ कायम करने के लिए लाजमी था कि आपके पास कोई सराय, हमाम या हजारों एकड़ जमीन हो? नहीं, सिर्फ अपने पास मौजूद नकद रकम वक्फ करके भी आप किसी यतीम का हाथ थाम सकते थे, किसी दुकानदार को दिवालिया होने से बचा सकते थे और किसी महल्ले का मुस्तकबिल संवार सकते थे। आज हम नकदी औकाफ के बारे में बात करेंगे, ऐसे वक्फ जहाँ पैसा गर्दिश के असूल पर काम करके खिदमत और भलाई की खातर एक जरियाए बरकत बन जाता था। क्या आप इस बात को जानने के लिए तैयार हैं कि आपकी मुट्ठी में मौजूद चंद सिक्कों को नेकी की एक ऐसी जंजीर में कैसे

हिप्पोक्रेट ने इसे इस्तेमाल किया। इब्न सीना ने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा और बहुत से लोग आज भी इस तरीकाकार का सहारा लेते हैं। कफ थेरेपी 4000 साल पुराना शफायाबी का तरीकाकार है, लेकिन कोई इसे नाड़ी करता है तो भी शफायाबी के बजाय आपको सेहत के संगीन मसाइल दरपेश हो सकते हैं। आइए मिलकर सीखते हैं कि किन चीजों पर ध्यान देना है और इसे कैसे करना है। हालिया वर्षों में लोग अपनी सेहत को सहारा देने के लिए मुख्तलिफ तरीकों की तरफ तेज से रुजू कर रहे हैं। इस जस्तजू के हिस्से के तौर पर रवायती तकमीली तिब्बी अमल दरामद हर गुजरते दिन मजीद तवज्जो हासिल कर रहे हैं। एकोपंक्चर और योंग थेरेपी से लेकर अरोमा थेरेपी और जोन थेरेपी तक वसी तरीकाकार का इहाता करने वाले रवायती तकमीली तिब्बी अमल न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि जहनी मजबूरी जिंदगी के तवाजन के लिए भी हल पेश कर सकता है। इन तरीकों में से एक कपिंग थेरेपी है। ये मश जो हाल ही में दोबारा मंजरेआम पर आई है आज बारीक बीनी से जांची जा रही है। आज हम हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के इमरानिया ट्रेनिंग एंड रिसर्च अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान एरसोई की तरफ से इस मौजू पर टीआरटी खबर को फराहम करता मालूमात आप तक पहुंचा रहे हैं। कपिंग थेरेपी जिसे अवाम में हजामा के